एंड वेलकम बैक। आते हैं हमारे दूसरे अनाउंसमेंट पर। दिस इज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट। क्या आप जॉब ढूंढ रहे हो और सोच रहे हो कि कहाँ से मदद और सलाह मिलेगी? लेबर डिपार्टमेंट ने पूरे हांगकांग में 10 जॉब सेंटर्स खोले हैं। यहाँ जॉब सीकर्स को बिल्कुल फ्री मदद मिलती है। किसी भी जॉब सेंटर में जाकर आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वहाँ एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर से बात कर सकते हैं, अपनी जॉब की ज़रूरतों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और उनके स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं। खासकर एथनिक माइनॉरिटी जॉब सीकर्स के लिए रेशियल डाइवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी लाया है। इसमें रजिस्टर्ड सोशल वर्कर्स आपको एक स्टॉप सोल्यूशन देंगे, पूरी मदद केस बाय केस अप्रोच से। लेबर डिपार्टमेंट की सर्विसेज इंग्लिश और चाइनीज में हैं। अगर आप इंग्लिश या चाइनीज नहीं बोल पाते तो वो आपके लिए फ्री इंटरप्रिटेशन सर्विस भी अरेंज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए www.jobs.gov.hk/em या इंटरैक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसको यूज़ करें। बढ़ते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। दिस सॉन्ग इज़ रिक्वेस्टेड बाय सकलैन बिलाल और गाने का नाम है जी दिल दी रानी एंड इट्स बाय गीता जैलदार। सो इंजॉय कीजिए ये गाना। इट्स डेडिकेटेड टू जस्सी एंड डॉलर फ्रॉम सकलान सनी वकार मनीमान। ऑलराइट, एंजॉय द सॉन्ग।

Okay, moving on to our next announcement. This is prevention of seasonal influenza, COVID-19 and other respiratory illnesses. इस सीजन में अलर्ट रहें, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कोविड-19 और दूसरे सांस की बीमारियां अभी भी चल रही हैं। अपनी सफाई और घर परिवार की हाइजीन का ख्याल रखें। खांसी या छींक आए तो टिश्यू से मुंह और नाक को ढक लें। हाथ लिक्विड सोप और पानी से कम 20 सेकंड्स तक अच्छे से धोएं। अगर तबीयत खराब लगे तो मास्क पहने और तुरंत डॉक्टर से मिलें। गवर्नमेंट का 2025 और 26 सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। हर साल फ्लू वैक्सीन लगवाएं, जितनी जल्दी उतना बेहतर। एलिजिबल लोगों को फ्री या सब्सिडाइज्ड फ्लू शॉट मिल सकता है। कोविड-19 अभी कम है, लेकिन हाई रिस्क लोगों को बूस्टर वैक्सीन टाइम पर लगवाना चाहिए, जैसे रेजिडेंशियल केयर होम्स वाले, 65 साल के बुजुर्ग, 50 से 64 साल के क्रॉनिक पेशेंट्स, इम्यूनिटी कमजोर लोग और प्रेग्नेंट महिलाएं। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए www.chp.gov.hk। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ओके, कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रिक्वेस्टेड सॉन्ग। ये हरप्रीत दिलों ने गाना रिक्वेस्ट किया है। गाने का नाम है CEO by Chima Y. Dedicated to Bachi Baba Hari Sabi Guru Guri Tungtao. My name Happy Kero. Okay, enjoy the song. This is CEO by Chima Y.

अगला अनाउंसमेंट ये है द वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम WFA। वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम जिसे शॉर्ट में WFA कहते हैं, अब एप्लीकेशन के लिए खुला है। ये हाउस होल्ड के नाम पर अप्लाई होता है, पूरा हाउस होल्ड हांगकॉन्ग रेजिडेंट होना चाहिए। अगर आपके घर वालों के टोटल वर्किंग आवर्स इनकम और एसेट्स लिमिट के अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक महीने में एक से ज़्यादा जॉब्स के वर्किंग आवर्स काउंट किए जा सकते हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों। अलाउंस के टाइप्स, अगर टोटल 144 आवर्स या उससे ज़्यादा हैं तो वो बेसिक अलाउंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 100

68 आवर्स या उससे ज़्यादा है तो मीडियम अलाउंस, 192 आवर्स या उससे ज़्यादा तो हायर अलाउंस। हाउस होल्ड की इनकम के हिसाब से फुल रेट या 3/4 रेट या हाफ रेट मिल सकता है। फुल रेट है बेसिक जो अलाउंस है वो है 1150 हांगकॉन्ग डॉलर पर मंथ, मीडियम है 1380 हांगकॉन्ग डॉलर पर मंथ, हायर है 1610 हांगकॉन्ग डॉलर पर मंथ। हर एलिजिबल बच्चे के लिए एक्स्ट्रा चाइल्ड अलाउंस भी मिल सकती है। फुल रेट 1610 हांगकॉन्ग डॉलर पर चाइल्ड पर मंथ है। नोट कीजिए कि ये जो घर WFA ले रहे हैं वो साथ में कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस नहीं ले सकते। पूरी डिटेल्स इनकम एसेट लिमिट्स और एलिजिबिलिटी के लिए वेबसाइट चेक कीजिए www.wfa.gov.hk। कोई सवाल हो तो 24 आवर हॉटलाइन पर कॉल कीजिए, नंबर है जी 2558-3000। ओके, बढ़ते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। खान भाई ने ये रिक्वेस्ट किया है, आन मिलो बाय गुलाब सिद्धू, डेडिकेटेड टू बाय अमेरिका, नोमी सिकंदर पंकज। एंजॉय द सॉन्ग गाइस।

ओके आ गए जी हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर. दिस इज आवर लास्ट अनाउंसमेंट. मेक प्रायर वर्क अरेंजमेंट्स इन टाइम्स ऑफ एडवर्स वेदर एंड एक्सट्रीम कंडीशंस. तूफान बारिश एक्सट्रीम कंडीशंस के टाइम में पहले से काम काम की प्लानिंग कर लो. एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय से बात करके अरेंजमेंट्स कर लें. ऑफिस

0: कब आना है, कब छुट्टी मिलेगी, काम कब शुरू होगा, और घर से काम करने का ऑप्शन भी है। गवर्नमेंट जब एक्सट्रीम कंडीशंस अनाउंस करे तो सिर्फ वो लोग जो कंपनी ने स्पेशली बोला है, बोला हो, सेफ तरीके से ऑफिस आए, बाकी सब जहां हो वहीं रुक जाओ या सेफ जगह पर रहो, तुरंत बाहर मत निकले। ज़्यादा डिटेल्स के लिए लेबर डिपार्टमेंट का कोड ऑफ प्रैक्टिस देखें। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ हमारे अनाउंसमेंट हो गए ख़त्म। द नेक्स्ट सॉन्ग इज़ रिक्वेस्टेड बाय बिलाल खान, एंड गाने का नाम है जवाई बाय नोमी जट, डेडिकेटेड टू अमेरिका बाय नोमी सिकंदर पंकज। एंजॉय द सॉन्ग।
1: प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं।

0: एंजॉय कीजिए ये गाना. दिस इज पद्मावी बाय सॉरी दिस इज बदनामी बाय नोमी जाट. या एंजॉय द सॉन्ग.
1: जट

0: एंड आते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। ये है जी, रिक्वेस्ट किया सनी जसवंत ने, एंड दिस सॉन्ग इज सेंड फ्रॉम दिल्ली इंडिया फॉर डेडिकेटेड सॉन्ग टू अमेरिका हांगकांग, पंकज सिंह। सॉन्ग गाने का नाम है टॉप द शिकारी बाय सुरजीत खान फ्रॉम सनी जसवंत, अमृत संधू, तिहाड़ जेल नंबर 4, नीरज भवाना ग्रुप, दिल्ली। Alrighty, enjoy the song. This is Top the Shikari by Surjeet Khan.
1: We got another one, baby. Big Bird, Surjeet Khan. I'm a proud boy.

ओके आते हैं जी अगले गाने पर. दिस इज बाय असम मतलूब. इन्होंने गाना रिक्वेस्ट किया है स्नेक बाय चीमा वाई एंड गुरसिद्धू, डेडिकेटेड टू पप्पो वाइस फारी वाइस अब्दुल्ला बट मिर्जा जी बिलाल एंड वहीद शेडी. चलो जी गाना एंजॉय कीजिए. दिस इज स्नेक बाय चीमा वाई एंड गुरसिद्धू.